के लिए वनवास जा चुके हैं तो वे अपना संतुलन खो बैठे। माँ केकई को बार बार कह रहे हैं कि बिना राम के वे नहीं जी सकेंगे।